हरी भजन बिना सुख शांति नहीं। हरी भजन बिना सुख शांति नहीं। हरी भजन बिना सुख शांति नहीं। हरी भजन बिना सुख शांति नहीं।

तो अपनी माँ की औलाद हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम गोरे हो और तुम काले, तुम लंबे हो और तुम नाटे, तो क्या हम उनकी बात मानेंगे? हर किस नहीं मानेंगे। द सरकार इज अटेम्प्टिंग टू डिवाइड अस ऑन द बेसिस ऑफ राम एंड रहीम, कृष्ण एंड करीम, एंड इफ वी वेयर टू सिट बैक एंड लाफ, इट विल बी नथिंग बट कवर्डिस, श्योर कवर्डिस। द टाइम हैज नाउ कम टू क्लेम फ्रीडम, फॉर स्वराज इज आवर बर्थ राइट, एंड वी शैल हैव इट। जय हिंद।

0: We now bring you a recital from the Sikh scripture, the Guru Granth Sahib.
1: Maj Mahalla Panjama Ot Pot Sevak Sangrata Praprat Pale Sevak Sukhdata Pani Pakha Piso Sevak Kai Thakar Hikaya Harjiyo Kaad Sirk Prab Seva Laya Hukm Sahib Ka Sevak Man Paya Soi Kamave Jo Sahib Paave Sevak Antar Bahar Mahar Jiyo Tu Dana Thakur Sab Jane Thakur Ke Sevak Harang Mane Jo Kich Thakur Ka So Sevak Ka सेवक ठाकर ही संग जाहर जियो अपने ठाकर जो पहराया बहुर ना लेखा पुछ बुलाया ते सेवक है नानक कुर्बानी सो गहर गंभीरा गौहर जियो माज महला पंजवा सब किश घर में बाहर नाही बाहर टोले सो परम पुलाही गुर प्रसादी जिनी अंतर पाया सो अंतर बाहर सुहेला जियो चिम चिम वर्षा अमृत तारा मन पीवे सुन शब्द बिचारा आनंद विनोद करे दिन राती सदा सदा हर केला जियो जन्म जन्म का विछड़िया मिलिया साध कृपा ते सूका हरिया सो मत पाए नाम ते आए गुरमुख होए मेला जियो जल तरंग ज्यों जलै सुमाया त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया कहो नानक परम कटे के वाड़ा बहु न होइए जौला जियो माज महला पंजवा तिस कुर्बानी जिन तू सुनिया तिस बलिहारी जिन रसना पढ़िया वार वार जाई तिस विटाओ जो मंतन तो द्यारा दे जियो तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चल नैन निहाली तिस पुरख दयाल मन देवा तिसे अपने साजन जिन गुरमिल सो प्रभ ला दे जियो सेवड पागी जिन तुम जाने सब कै मद्दे अलिप्त निर्वाणे साध कै संग उन पौ जल तरिया सगल दूत उन सा दे जियो तिन की शरण भरिया मन मेरा मान तान तज मोह अंधेरा नाम दान दीजे नानक कहो तिस प्रभ अगम अगा दे जियो माज महला पंजवा तू पेड़ साख तेरी फूली तू सूखम होवा अस्थूली तू जल निद तू फेन बुद बुदा तुत बिन अवर ना पालिए जियो तू सूत मणिये पी तू है तू गंठी मेर सिर तू है आद मद अंत प्रभ सोई अवरना कोई दिखा लिए जियो तू निर्गुण सरगुण सुखदाता तू निर्वाण रसिया रंग राता अपने कर्तव्य आपे जाने आपे तुद संभालिए जियो तू ठाकर सेवक फुन आपे तू गुप्त प्रगट प्रभ आपे नानक दास सदा गुण गावे एक पूरी नजर निहालिए जियो माज महला पंजवा सफल सो बाणी जित नाम वखाणी गुर प्रसाद किने विर लै जानी तन सो वेला जित हर गावत सुनना आए ते परवाना जियो से नेत्र प्रवान जिनी दर्शन पेखा से कर भले जिनी हर जस लेखा से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले हम बलतन संग पछाणा जियो सुन साजन मेरे मीत प्यारे सा संग खिन माहे उधारे किल विख काट हुआ मन निर्मल मिट गए आवन जाना जियो दोए कर जोड़क बिनो करी जय कर कृपा डुबदा पत्थर ली जय नानक कौ प्रभ पै कृपाला प्रभ नानक मन पाणा जियो माज महला पंजवा अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ, ਸੂਖ ਭਇਆ ਦੁਖ ਦੂਰ ਪਰਾਨਾ, ਸੰਤ ਰਸਨ ਹਰ ਨਾਮ ਵਖਾਨਾ, ਜਲ ਥਲ ਨੀਰ ਭਰੇ ਸਰ ਸੁਭਰ, ਬਿਰਥਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਏ ਜੀਓ, ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਤਿਨ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੇ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਗਲੇ ਪ੍ਰਤਪਾਰੇ, ਮਿਹਰਵਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਦਇਆਲਾ, ਸਗਲੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ ਜੀਓ, ਵਨ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਕੀ ਤੋਨ ਹਰਿਆ, ਕਰਨ ਹਾਰ ਖਿਨ ਪੀਤਰ ਕਰਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਤਸੈ ਅਰਾਧੇ, ਮਨ ਕੀ ਆਸ ਪੁਜਾਏ ਜੀਓ, ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਪ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਤਾਂ ਪਉ ਕਿਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਓ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤੁਧ ਪਛਾਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਣਾ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਅਖਾੜਾ ਜੀਓ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਓ ਪਾਏ, ਜਿਤ ਪਾਣਾ ਤਿਤ ਤਲਾਏ, ਸਭ ਕਿਛ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਅਸਾੜਾ ਜੀਓ, ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀਤਲਾਇਆ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਵੱਜੀ ਵਾਧਾਈ, ਨਾਨਕ ਜਿੱਤਾ ਬਿਖਾੜਾ ਜੀਓ, ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਭ੍ਰਮ ਨੇ ਅਧਾਰਾ, ਭਗਤ ਜੀਵੈ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਪਾਰਾ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਨਾਮਾ, ਹਰ ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਜੀਓ, ਮਨਸਾ ਧਾਰ ਜੋ ਪਾਏ, ਜਿਜਤ ਪਾਣਾ ਤਿਤ ਤਲਾਏ, ਸਭ ਕਿਛ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਅਸਾੜਾ ਜੀਓ, ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ

गुण निदान अमृत हर नामा, हर त्याय त्याय सुख पाया जियो, मनसा तार जो करते आवै, साध संग जन मरण मिटावै, आस मनोरथ पूर्ण होवै, भेटत गुरदर साया जियो, आगम्या गोचर किशमित नहीं जानी, साधक सिद्ध ते आवै ज्ञानी, खुदी मिट्टी चूका पोलावा, गुरमन ही मह प्रगटाया जियो, आनंद मंगल कल्याण निधाना, सुख सहज हर नाम वखाना, होए किरपाल स्वामी अपना, ना ओ नानक कर मैं आया जियो, माज महला पंजवा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, तू प्रीतम ठाकरियत भारी, तुमरे करतब तुम ही जाना हो, तुमरी ओट गोपाला जियो, गुण गावत मन हरिया होवै, कथा सुनत मल सगली खोवै, भेटत संग साध संतन कै, सदा जपो दयाला जियो, प्रभ अपना सास सास सुमारो, एह मत गुर प्रसाद मन धारो, तुमरी कृपा ते होए परगासा, सर्व मया प्रतपाला जियो, सत सत सत प्रभ सोई, सदा सदा सद आपे होई, चलत तुम्हारे प्रगट प्यारे, देख नानक पए निहाला जियो, माज महला पंजवां, हुक्मी वरसन लागे मेहा, साजन संत मिल नाम जपेहा, शीतल सांस है सुख पाया, ठांड पाई प्रभ आपे जियो, सब किश बहुतो बहुत उपाया, कर कृपा प्रभ सगल रजाया, दात करो मेरे दातारा, जी जंत सब तरापे जियो, सच्चा साहेब सच्ची नाई, गुर प्रसाद ते सदा ते आई, जन मरण पै काटे मोहा, बिनसे सोख संतापे जियो, सास सास नानक साला हे, सिमरत नाम काटे सफा हे, पूर्ण आस करी खिन पीतर, हर हर हर गुण जापे जियो, माज महला पंजवां, आओ साजन संत मीत प्यारे, मिल गावै गुण अगम्या पारे, गावत सुनत सबे ही मुक्ते, सो त्याई जिन हम किए जियो, जन्म जन्म के किल बिख जावै, मन चिंदे से ही फल पावै, सिमर साहेब सो सच स्वामी, रिजक सब सकौ दिए जियो, नाम जपत सर्ब सुख पाईऐ, सपो बिनसै हर हर त्याई, जिन सेव्या सो पार ग्रामी, कार्ज सगले थीए जियो, आए पया तेरी सरनाई, ज्यो पावै त्यों लह मिलाई, कर कृपा प्रभक्ति लावो, सच नानके अमृत पीए जियो, माज महला पंजवां, पहे कृपाल गोविंद गोसाई, मेघ वरसै सबनी थाई, दीन दयाल सदा कृपाला, ठांड पाई करतारे जियो, अपने जी जंत प्रतपारे, जो बारक माता सुमारे, दुख पंजन सुख सागर स्वामी, देत सगल आहारे जियो, जल थल पूर रहया मेहरवाना, सद बलिहार जाइए कुर्बाना, रैन दिन सो तिसदा त्याई, जे खिन मैं सगलो उदारे जियो, राख लिए सगले प्रभ आपे, उतर गए सब सोख संतापे, नाम जपत मंतन हरियावल, प्रभ नानक नदर निहारे जियो, माज महला पंजवा, जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे, से अस्थल सोयन चौबारे, जिथे नाम न जपिए मेरे गोइंदा, सेई नगर उजाड़ी जियो, हर रुखी रोटी खाए संभाले, हर अंतर बाहर नजर निहाले, खाए खाए करे बद फैली, जान विसु की वाड़ी जियो, संतां सेती रंग न लाए, साक्त संग विकर्म कुमाए, दुलब देह खोई अज्ञानी।

तेरी शरण मेरे दीन दयाला, सुख सागर मेरे गुरु गोपाला, कर कृपा नानक गुण गावै, राखो सरमिया साड़ी जियो। माझ महला पंजवां, चरण ठाकर के हृदय समाणे, कल कले सब दूर पयाने, सांत सूख

आप करे तै आप कराए, पूरे गुर कै शब्द मिलाए, नानक नाम मिलै वडियाई, आपे मिल मिलावणिया, माज महला तीजा। इको आप फिरै प्रसन्ना, गुरमुख वेखा ताहु मन पिन्ना, त्रिसना ताजो सह सुख पाया, एको मन वसावणिया। हौ वारी जियो वारी, एक स्यों चित लावणिया, गुरमती मन इकत घर आया, सच्चै रंग रंगावणिया। रहाओ एहो जग भूला तां आप भुलाया, एक विसार दूजै लोभाया, आंदन सवा फिरै परम भूला, बिना मैं दुख पावणिया। जो रंग राते कर्म विधाते, गुरसेवा ते जुग चारे जाते, जिसनो आप दे वडियाई, हर कै नाम समावणिया। माया मोहे हर चेतै नाही, जंपर बद्दा दुख सहाही, अन्ना बोला किश नजर ना आवै, मनमुख पाप जावणिया।